जी हाँ, सिर्फ रब का साया ही हमें बचा सकता है। आज है 14 जून 2027 और 27 ज़िलहज 1447। रब्बुल आलमीन से फिर दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें हिकमत अता फरमा, हमारी जबान को हक गवाही के लिए खोल दे, हमारे कलम में बरकत डाल दे, हमारे कोशिशों को कबूल फरमा और हमें वो इज्जत अता कर जो तेरे बंदों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत पैदा करे। या रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़ हलाल अता कर, हमारी परेशानियों को आसान कर, हमारे ख्वाबों को हकीकत में बदल, हमारे दिलों को ऐसा सुकून दे कि हम हर हाल में तुझ पर ही भरोसा रखें। हम गवाही देते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। तो ये अगला कलाम है रज़ा-ए-इलाही।

तो दुनिया को खुश करने में लगा रहा, लोगों की नजरों में उठने की कोशिश करता रहा, मगर कभी रुक कर ये सोचा, जिस रब ने तुझे पैदा किया वो तुझसे राजी भी है या नहीं।

आज भी वक्त है, दरवाजा बंद नहीं हुआ, सांस चल रही है, तो लौटा लोगों को नहीं, अपने रब को राजी कर ले।

शक बशर जहां में खुदा भी बने नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानू। बड़ा ही हसीन मतलब आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मुलायजा फरमाए सामाई।

बेशक कोई माँ के जैसा नहीं, जैसे हमारी वहीदा आपा कह रही है, only those who have lost their mothers will know the heartache and mothers feel the heartache when children alienate and estrange themselves from their mothers. A mother is a mother, and if she's lying in a galley and she says, this kalam brought tears in her eyes. Beshak maa jaisa koi nahi is duniya mein jo apne bachcho ko samajh sakti hai, jo apne bachcho ke liye kya kya qurbani nahi karti. Message of birthday ka mere मोहम्मद अमीर के लिए 10 जून के लिए, हाफिजा 13 जून के लिए और मेरे दामाद कबीर पाक 14 जून के लिए. मैं अल्लाह ब्लेस देम ऑल विद गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, खैर एंड बरका इंशाल्लाह. एंड दिस कम्स फ्रॉम दलवी अब्बास पाक एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज. और मेरी प्यारी दोस्त रशीदा पा भी ये प्रोग्राम इंजॉय करी, शी एंजॉय द टू कलाम्स ऑन मुहर्रम एंड ऑफ कोर्स ऑन मदर. और एक कम्युनिटी मैसेज आया है हफसानी जंजीरा सोसाइटी की तरफ से, उनके 110 साल हुए हैं, तो ओपन डे है और वो चाहते हैं कि प्लेयर एंड सपोर्ट रजिस्ट्रेशन होगा. एंड दे इनवाइटिंग ऑल द मेंबर्स फ्रॉम द हफसान गांव टू अटेंड एन ओपन डे ऑन ट्यूसडे 16 जून एट गौसिया मंजिल फ्रॉम 14:30 टू 16. एंड दे आर लुकिंग फॉर प्लेयर्स एंड managers and team supporters and of course volunteers. So age hogi 18 years to 35 years, or age between 13 and 17 will be under consideration, and 35 to 50 also will be under consideration. So agar aap jana chahe open day ke liye to zarur jaiyega. Aur aap Ataullah sahab ko 08290-6786 par contact kar sakte hain. जंजीरा हफसानी सोसाइटी 110 साल लेगेसी के ओपन डे प्लेयर एंड सपोर्ट रजिस्ट्रेशन होगा. और दे इनवाइटिंग ऑल मेंबर्स फ्रॉम हफसान गांव टू अटेंड द ओपन डे ऑन ट्यूसडे 16 जून एट गौसिया मंजिल फ्रॉम 14:30 टू 16 टू रजिस्टर इन पार्टिसिपेटिंग एज प्लेयर्स, मैनेजमेंट एंड कोचेस, टीम सपोर्ट, वॉलंटियर्स एंड एजेस फ्रॉम 18 टू 35. कह रहे कि एज बिटवीन 13 एंड 17 एंड 36 एंड 50 विल बी कंसिडर्ड, तो ज़रूर चाहिएगा. और आप अताउल्ला साहब को 08290-6786 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. कल अंजुम आरा खान का भी कॉन्सर्ट हुआ था बैक्स्टेज थिएटर में, काफ़ी इंटरटेनिंग था. माशाल्लाह ऑल द आर्टिस्ट वर गुड, और जो सोलो आर्टिस्ट थे बैंड्स के, उन्होंने भी बेहतरीन अपने हारमोनियम और गिटार पे बहुत अच्छा बजाया था. और काफ़ी ऑल द सिंगर्स वर गुड, ऑल द सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स वर गुड. स्पेशली खलील दलवाई के बेटे, उन्होंने बहुत ही अच्छे माशाल्लाह गाने गाए, काफ़ी अच्छे था. और इंशाल्लाह ऐसे ही आप अंजुम आपा हमें इंटरटेन करते रहे. भूलेगा नहीं कल इस्लामिया में उनका गज़ल का प्रोग्राम हो रहा है रूहानियत इस्लाम ऑडिटोरियम में, शाम के 7:30 बजे ज़रूर शामिल होइए. अगला कलाम है हर एक ख्वाब मुकम्मल ना हो

हर ख्वाब सच हो जरूरी तो नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए, अल्लाह कामयाबी दे, लेकिन कभी कभी बाज़ वक़्त मुश्किलें आती हैं और ये एक आजमाइश होती है। अगला कलाम, हम सस्ते थे लोग महंगे निकलेंगे।

जी हाँ, तकरीबन रात के 9:35 हो चुके हैं और प्रोग्राम की समाप्ति का वक्त होने जा रहा है। ये आखिरी इतवार था 1447 का ज़िलहज महीने का। इंशाल्लाह चांद रात होगी मंगल या बुध को, हम जा रहे हैं 1448 में। रब्बुल आलमीन से फिर से दुआ करते हैं कि ये जो गया साल उसमें काफ़ी मुसीबतें थी, परेशानियां थी मुसलमान को दुनिया भर में, तो अल्लाह ताला आने वाले साल हर मुसलमान के लिए आसानी पैदा करे। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी दे, और जो भूखे हैं उनकी भूख मिटा दें। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे टेक्नीशियन शब्बीर जेकब्स का, जो बहुत मेहनत करते हैं। विलिंगली ही हेल्प्स मी, ही डज अ फैंटास्टिक जॉब। दुआ करें इस बच्चे के लिए भी, और आपके लिए भी हम दुआ करेंगे और आप भी हमारे लिए दुआ करें। इसके बाद आप सुनेंगे नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में अली मौला अली मौला, और साकिब अली साहब की आवाज़ में जान की साकिब अली साहब की आवाज़ में भी एक मनकबत होगी, और फिर सलामी होगी यसर रजा कादरी साहब की आवाज़ में। बरकत का मतलब ज़्यादा माल या ज़्यादा चीज़ें होना नहीं, बरकत यह है कि अल्लाह आपके पास मौजूदा चीज़ों में खैर, सुकून और फ़ायदा डाल दे। अगर ज़िंदगी में बरकत चाहिए तो अस्तगफार और अपने नामो अमाल बना के नमाज वक्त पर अदा करे, सदका करे, वालिदैन की इज्जत और खिदमत करे, और गरीबों की मदद करे। अल्लाह ताला हमारे ज़िंदगी में, रिज़्क में, वक्त अमाल में ऐसी बरकत अता फरमाए जो दुनिया व आखिरत की भलाई का सबब बन जाए। इंशाल्लाह आमीन। आने वाला साल सबके लिए बरकतों वाला हो, खुशियों वाला हो, ये दुआ है हमारी। इसी पैगाम के साथ मैं सुफिया दिलवी आपसे रुखसत चाहती हूँ, ये वादा लेते हुए कि अगले हफ्ते इसी वक्त हम मिलेंगे। ज़िंदगी बाकी रही तो फ़ी अमानिल्लाह, शब बख़ैर, जज़ाकल्लाह खैर।

0: इस सोच में गुम है, हमसे तो एक खत भी जलाया न जा सका।
1: उस्ताद शायर हैं, पहले पूरी गजल सुनना।

0: हनीम भाई, अशरफ भाई और आदम भाई, आतिफ भाई, जितने भाई हैं सभी से खास तवज्जो। अयुब भाई तवज्जो का ताली।
1: इतनी जल्दी
0: सलीम भाई, वसीम भाई,